0: नमस्कार, म गायक अनन्त घिमिरे। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ लेख बेसीको धुन, रेडियो अरुण, सधैँ सुन्नुहोस् है।
1: अब समाचार विस्तारमा। छिमेकी मुलुकको भारत सरकारद्वारा सात सो क्षेत्र छलफल समाचार।

0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हर पल हर तपाईं सँगै।
1: रेडियो अरुण टाइम चेक
2: इट्स 8 AM
3: अहिले बिहानको 8 बज्यो।
4: खरो विषयमा सरो बहस नेपाली बहस
5: यस नेपाली बहसका साथमा
6: प्रीति तयारी चल्छौ।
7: ग्लोबल आर्मी ब्याङ्क सबैका लागि ब्याङ्क
8: पीस होम इन्टरनेट

0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हरपल हर तपाईं सँगै।
1: रेडियो अरुण टाइम चेक
2: It's 10 AM
3: अहिले बिहानको 10 बज्यो।

ठेगाना पनि चाहियो नि त चैनपुर 10 संघसभा है चैनपुर 10 लोहाकोट ए चैनपुर 11 लोहाकोट संघसभा ठुलदाई र ठुलदाई श्रीराम दाहाल र ठुलदाई श्रीराम दाहाल चैनपुर नगरपालिका 11 लोहाकोट संघुवा सभा चैनपुर नगरपालिका र ठुलदाई श्रीराम दाहाल चैनपुर नगरपालिका र ठुलदाई श्रीराम दाहाल चैनपुर नगरपालिका 11 लोहाकोट संघुवा सभा र ठुलदाई श्रीराम दाहाल

0: रेडियो अरुण
1: अरुण
0: 97.6 MHz
1: हरपल
0: तपाईं सँगै।
2: रेडियो अरुण टाइम चेक
3: इट्स 5 PM
4: अहिले अपराह्नको 5 बज्यो।

0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हर पल हर तपाईं सँगै।
1: रेडियो अरुण टाइम चेक 7 PM
2: अहिले साँझको 7 बज्यो।

0: रेडियो अरुण
1: अरुण
0: 97.6 MHz
1: हरपल
0: हर
1: तपाईं सँगै।
2: रेडियो अरुण टाइम चेक
3: इट्स 8 PM
4: अहिले रातको 8 बज्यो।

0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हरपल हर तपाईं सँगै
1: रेडियो अरुण टाइम चेक इट्स 9 PM
2: अहिले रातको 9 बज्यो।

0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हर पल हर तपाईं सँगै।
1: रेडियो अरुण टाइम चेक
2: इट्स 5 AM
3: अहिले बिहानको 5 बज्यो।